हमें उजाल आ मेत्रे हम बिल्कुल आते आ कुजाए रासो बीब जाए ले चेरी की हलाज को